0: मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, जिसका हम सभी को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। सवाल होता है कि यार किस घड़ी की बात कर रहा है भाई साहब? उसी घड़ी की जिसका पूरे हफ्ते हमें इंतजार होता है, संडे वाली नहीं, सैटरडे वाली मॉर्निंग की। क्योंकि जो संडे का मजा है ना, वो सैटरडे में ही आता है। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वगैरह सब कुछ सैटरडे में होती है, और वीकेंड के सारे प्लान हम मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं शनिवार के दिन। वीकेंड का वार शनिवार, इस लफ्ज के अंदर ना तो कितना सुकून है ना, वो मंडे वाली भागदौड़ नहीं है, टेंशन नहीं है, मंगलवार फ्रस्ट्रेशन नहीं है, बुधवार वाला रोना नहीं है, बस शनिवार वाला सुकूनपन है आज इस शनिवार के दिन। तो इसी सुकून को और भी आगे लेकर जाएंगे, और बहुत सारी बातें, मुलाकातें और हसीन नगमों का साथ भी होगा, क्योंकि सैटरडे यानी कि रिलैक्स वाला दिन होता है। तो अपने शो में बस रिलैक्स वाली बातें होती है, ना गहरी, ना कुछ दिमाग को टेंशन देने वाली, बस सुकून का एहसास करवाने वाली। सो गुड मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, वीकेंड का वार में शो का आगाज करते हैं। और भी बहुत सारी बातें लेकर आऊंगा मैं कुछ देर में, अभी तो अपनी मुलाकात का सफर शुरू हुआ है, बहुत कुछ बाकी है अभी।
1: Only on MGM 90.8 FM.

जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी। गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत।

किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। एक छोटा लड़का था, रोज स्कूल जाते वक्त रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बैठा मिलता। वो बूढ़ा आदमी भीख नहीं मांगता था, बस चुपचाप बैठा रहता। लड़का रोज उसे देखता और एक दिन उसने अपनी जेब से एक छोटा सा सिक्का निकालकर उस बूढ़े आदमी के सामने रख दिया। बूढ़े ने मुस्कुराया और कहा, बेटा तुम्हारे पास तो खुद ज्यादा नहीं होते पैसे, फिर भी तुम ये मुझे दे रहे हो। तो लड़का बोला, दादाजी मम्मी कहती है अगर किसी की मदद करने का मौका मिले तो उसे जाने नहीं देना चाहिए। उस दिन के बाद लड़का रोज कभी बिस्किट कभी फल कुछ ना कुछ दे देता। फिर एक दिन लड़का आया लेकिन वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। लड़के को थोड़ा दुख हुआ, वो चुपचाप स्कूल चला गया। कुछ साल बीत गए, एक दिन वही लड़का अब बड़ा होकर नौकरी के इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आया और लड़के को देखते ही मुस्कुरा दिया। लड़का हैरान था, वो चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। तभी उस व्यक्ति ने कहा, पहचाना मुझे? लड़के ने सिर हिलाया और कहा, नहीं। वो आदमी बोला, मैं वही बूढ़ा आदमी हूँ जो सड़क के किनारे बैठा करता था। लड़का एकदम चौंक गया। वो आदमी बोला, मैं दरअसल लोगों की इंसानियत देख रहा था और उस दिन तुमने अपना आखिरी सिक्का देकर बता दिया कि तुम दिल से अमीर हो। फिर मुस्कुरा कर कहा, नौकरी तुम्हें मिल गई है क्योंकि काम तो हर कोई सीख सकता है लेकिन अच्छा इंसान होना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो इस कहानी से सीख हमें यही मिलती है, कभी कभी छोटी सी अच्छाई जिंदगी का सबसे बड़ा मौका बन जाती है। तो अच्छा ही करते रहिएगा। किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक गेम खेलने का भी वक्त हो चुका है जिसमें ना तो बढ़िया से गिफ्ट जीतने का आपको मौका देता हूँ मैं, यानी कि आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान। और आज कॉन्टेस्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और आप मुझे उसका जवाब बताना और गिफ्ट जीतना। तो सवाल कुछ ऐसा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पहले सूर्योदय होता है, यानी कि सूरज निकलता है। ऐसा भारत का कौन सा राज्य है सबसे पहले वहां पर सूरज देवता के दर्शन होते हैं, बताइए मुझे। डीएम कीजिएगा इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर, जो सबसे पहले जवाब देगा उसे गिफ्ट मिलने वाला है। तो जल्दी करें और बताएं कि भारत में किस राज्य में सबसे पहले सूरज निकलता है और जवाब दे गिफ्ट जीते और सुनते रहे।
1: Only on MGM 90.8.

से नेहा हमार होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

मेंटल हेल्थ ठीक रखिए भाई और ओवर थिंकिंग को भी कम रखिए। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। तो इसी पर बात करने के लिए अपने साथ है डॉक्टर मानसिक रजगावकर मैम, HOD ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी। सो मैम, ओवर थिंकिंग पर हम बात कर रहे हैं, तो ये कम

0: कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी हैबिट्स बताइए।
1: सबसे पहली हैबिट तो है टाइम पर सोना और टाइम पर जगना, है ना? वही होना चाहिए। वो हमारे हाथ में है, लेकिन like we discussed कि हम करते नहीं है जो सिंपल चीजें हैं। तो सबसे पहला टिप है कि आपका स्लीपिंग टाइम फिक्स चाहिए एंड वेकअप टाइम फिक्स चाहिए, एक स्केड्यूल बनना चाहिए। सेकेंड चीज है हमारी फिजिकल मूवमेंट रोज होनी चाहिए। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, है ना, थोड़ा ग्राउंड एक्सरसाइज ही कर लीजिए, भले ही 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, लेकिन वो रेगुलरिटी से होना चाहिए। फिर डिजिटल टाइम जो है, एक फिक्स्ड फ्री डिजिटल टाइम या डिजिटल फ्री जोन, ऐसा कुछ हमको क्रिएट करना होगा लाइफ में कि जैसे मान लीजिए रात में 10 से 12 या 9 से 11 या जो भी है, आप बिल्कुल फोन को टच नहीं करेंगे और 10 मिनट माइंडफुल रहना है। एक जगह बैठ के आंखें बंद करके बस सोचना है कि आज दिन भर में हमने क्या क्या किया और क्या क्या सही हो सकता था और बेहतर हो सकता था।
0: सो मैम ने जो चीजें बताई है वो फॉलो कीजिएगा और उससे भी आपकी ओवर थिंकिंग कम हो सकती है। सो ज्यादा सोचे मत, और भी सोचने के ऊपर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहे होंगे, वो माइंड में सवाल क्या है बताइए, पूछिए हमसे 9359320080 इस नंबर पर।

0: मौका मिले तो भगवान भेज खाए। हाय हाय हाय हाय, कुछ लोगों का धंधा हुआ है।
1: क्या
0: मंदिर में

फरमाइश फरमाइश और फरमाइश आपकी फरमाइश है सराखों पर. यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM. आज गाने की फरमाइश आई है प्रेम

और ये सेल्फ मोटिवेशन के लिए ना तो ये गाना बहुत काम की चीज है, ना मुंह छुपा के जियो। चलो फिर प्रेम जी की फरमाइश पर ये मोटिवेटेड और प्रेम भरा गाना अभी हम एंजॉय करते हैं।

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजी नगर।

0: मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

कहते हैं ना कि सर सलामत तो पगड़ी हजार। तो बात कुछ ऐसी है कि देखो हेलमेट कितने लोग यूज करते हैं, मुझे लगता है कि कोई भी यूज नहीं करता होगा। 10 में से बस 2 या 3 लोग हेलमेट यूज करते होंगे, वरना हमें लगता है भाई क्या ही हो जाएगा। और कुछ लड़के कहते हैं कि यार हेलमेट पहनने के बाद तो मेरे बाल खराब हो जाते हैं। भाई अगर सही नहीं रहेगा, बाल ही नहीं रहेंगे तो दिखेगा क्या? खुदा ना खासा कुछ हो गया तो सबसे पहले मार लगता है अपने सर पर, और अगर हेलमेट रहा तो उससे हम बच सकते हैं। बट ये बात हमें समझ में नहीं आती, इसी वजह से तो पुलिस ने एक मुहिम राबोली होती हेलमेट सक्ती बाबत। आणि या मोहिमे अंतर्गत ना त्यांनी शहरातील रस्त्यांवर जरा चेक केलं की किती लोक हेलमेट घालतात किती नाही, तर 1000 पेक्षा जास्त लोकांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि त्यांच्याकडून फाईन सुद्धा वसूल करण्यात आलेलं आहे। तर एकाच दिवसात 11 लाख रुपयांपेक्षा जास्त फाईन वसूल करण्यात आलंय, क्योंकि कोणी हेलमेट पहनताही नाही। तुम्ही जर बाहेर जाऊन बघितलं ना, तुम्हाला सिग्नलवर जस्ट उभं राहून तुम्ही चेक करा, इतके सर्व टू व्हीलर्स असतात आणि फक्त 1 किंवा 2 लोकांकडे हेलमेट असतो, बाकी ऊपर वाले के भरोसे निकल आते घर के बाहर। और आप पर ऊपर वाले का ध्यान नहीं रहा और आपका ध्यान भटक गया और आपका कुछ हो गया तो फिर सीधा आप ऊपर वाले को प्यारे हो सकते हो। तो इस वजह से कह रहा हूं भाई हेलमेट घालत जा, क्योंकि जान है तो जहान है। और एक बात, सर सलामत तो पगड़ी हजार, समझिए इस बात को। आणि वाहतूक पोलिसांची मुहिम सुरू आहे, तर जरा हेलमेट वगैरे वापरा, नाहीतर फाईन पे करा। मग बाकी म्हणू नका आम्हाला माहितच नव्हतं असं काही सुरू आहे मुहिम, तर सध्या मला माहित झालं ना, तर यूज करा हेलमेट। बाकी स्टे ट्यून ओनली ऑन MGM 90.8।

0: बात कुछ ऐसी है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि अपने शहर में हेलमेट कंपलसरी हो रहा है? सवाल तो उठता है ना। तो जवाब कुछ ऐसा है कि पिछले कुछ टाइम से ऐसा देखा गया है कि शहर में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं और टू व्हीलर के भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। और जितने एक्सीडेंट होते हैं ना, तो उसमें तकरीबन 20% रेशो ये टू व्हीलर एक्सीडेंट का होता है जिसमें हेलमेट यूज नहीं किया होता है। कुछ दिन पहले की बात है, क्रांति चौक में एक एक्सीडेंट हो गया, 2 लोगों की जान चली गई। टू व्हीलर पर जा रहे थे और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और सीधे मार उनको सर पर लग गया। अगर हेलमेट होता तो बच जाते। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की रिपोर्ट है जिसमें 170 लोगों की मौत ये बस एक्सीडेंट से हो गई है टू व्हीलर के। और हाँ, 1 सितंबर से ना तो हर सिग्नल पर, हर रोड पर हमें दिखाई देंगे ट्रैफिक पुलिस वाले हेलमेट चेक करते हुए। अगर आपके पास हेलमेट नहीं होगा, 1000 रुपए का फाइन आपको पे करना पड़ेगा। तो ये भी याद रखिएगा, 1000 का फाइन आपको पे करना है या फिर हेलमेट यूज करना है। हेलमेट यूज करो, लेकिन फाइन से बचने के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए। क्योंकि जान है तो जहान है। एक गलती की वजह से ना तो आपकी तो जान चली जाती है, लेकिन आपके पीछे जो रह जाता है आपका परिवार, आपके अपने लोग, उन्हें जिंदगी भर सर्वाइव करना पड़ता है। वो भी सोचते होंगे यार, उसने हेलमेट पहना होता तो आज हमारे साथ होता। अपने फैमिली के लिए, अपनों के लिए तो भी हेलमेट यूज किया करो भाई। भले आपकी हेयर स्टाइल खराब होती हो, 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेना बाद में सेट करने के लिए बाल, लेकिन सबसे पहले अपनी जिंदगी को सेट करना और हेलमेट यूज जरूर करना। अब देखा जाएगा कि जिस तरीके से अभी ये मुहिम शुरू है, तो इस वजह से कितने लोग हेलमेट यूज करेंगे और कितने फाइन भरेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8.

0: is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrics, इनके guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर.
3: Your dream is to become an engineer, an architect or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
4: Buy one get one free. होय होय खरं एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा. स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्यामकुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर्स.
5: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री.
4: म्हणजे स्टाईलही डबल आणि शॉपिंगचा आनंदही डबल. स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत.
5: द्वारकादास श्यामकुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत.
4: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत. पत्ता द्वारकादास श्यामकुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991.

स्मार्ट सिटी बसेस अपने शहर की लाइफलाइन ऐसा हम कह सकते हैं, बट वही लाइफलाइन अगर सलाइन पर चल रही हो तो कैसा होगा भाई। तो बात कुछ ऐसी है जनाब की एक रिपोर्ट में ऐसा आया है अपने शहर में तकरीबन 100 स्मार्ट सिटी बसेस है और जिसमें से 30% स्मार्ट सिटी बसेस बंद है, यानी कि उनका मेंटेनेंस वक्त पर हुआ नहीं और बचे कुचे बस के जरिए पूरे शहर की लाइफलाइन चल रही है। अब देखो बात ये आती है कि यार हमारे पास हम सब कुछ स्मार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका मेंटेनेंस करना ये दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता और तकरीबन हर महीने 2 करोड़ से ज्यादा इनकम ये स्मार्ट सिटी बसेस करती है और इससे ज्यादा खर्च इसके मेंटेनेंस के लिए लग रहा है। अब अपने शहर में सुना है इलेक्ट्रिक बसेस भी आने वाली, 35 बसेस शहर में आने वाली, तो एक ही दरख्वास्त है प्रशासन से, भाई जो बसेस नहीं आ रही है ना तो उनका तो भी वक्त पर मेंटेनेंस किया करो, वरना नई नवीली दुल्हन जैसे 99 दिवस तुम्हें करताल और त्यानंतर परिस्थिति जैसे थे हो जाएगी और उसके बाद जो नई चीजें है वो भी 1 साल के बाद पुरानी हमें नजर आएगी। हालांकि इतनी जल्दी पुरानी नहीं होनी चाहिए बट जिस तरीके से आप इसका ख्याल रखते हो तो होने तो वाला ही ऐसा लग रहा है, बिकॉज इतनी अच्छे स्मार्ट सिटी बसेस अपने शहर में हमने भी अगर देखा होगा ना तो समझ में आता है भाई क्या हाल हो गया इनका, सब खट खट खटारा हो चुके हैं। पर करे तो करे क्या, स्मार्ट सिटी बस कागज पर हमें नहीं बनानी है, असल मायने में

0: your future at Mahatma Gandhi Mission University,
1: where innovation meets excellence. Admissions are open
0: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
1: across diverse fields from engineering and AI to law.
0: Apply now at www.mgmu.ac.in
1: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज

0: मंडे से फ्राइडे तक हम सब एक रेस में भागते हैं। टाइम पे उठना है, ऑफिस जाना है, काम कंप्लीट करना है, डेडलाइन संभालनी है, और इन सब के बीच कभी कभी ना हम खुद को ही भूल जाते। होता है ना ऐसा, सभी के साथ होता है यार। लेकिन फिर आता है वो दिन जिसका हमें इंतजार होता है, दैट्स कॉल्ड सैटरडे। और एक ऐसा दिन जब लाइफ थोड़ी स्लो करने का मन करता है, ना किसी डेडलाइन की टेंशन, ना हर वक्त प्रोडक्टिव रहने का प्रेशर। कभी कभी ना तो बस अपनी फेवरेट चाय लेकर बालकनी में बैठ जाना भी जरूरी होता है। और कभी बिना किसी प्लान के म्यूजिक सुनना, कभी दोस्तों के साथ मिलना, कभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और कभी कभी तो बस सो जाना। क्योंकि वीकेंड का मतलब सिर्फ बाहर जाना या पार्टी करना नहीं होता है, वीकेंड का मतलब है थोड़ा सा वक्त खुद के नाम करना है। तो आज क्या है, वही दिन है वीकेंड, यानी कि सैटरडे वाला दिन। मतलब मंडे की टेंशन मंडे को देखेंगे, आज थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा मुस्कुराओ और अपनी लाइफ को फील करो मेरी जान, बिकॉज समटाइम्स कुछ नहीं करना भी बहुत कुछ करने जैसा होता है। तो ये बात को याद रखिएगा और सैटरडे खूबसूरत तरीके से गुजारिएगा, चाहे दिन हो या रात हो, बेहतरीन हो ही जाएगी आपकी। यही एक मेरी ख्वाहिश है कि आपका अच्छे से सैटरडे गुजरना चाहिए। बाकी ख्वाहिशें और भी दोगुनी करते हैं ब्यूटीफुल से गाने के साथ, वो काम मेरा है। मैं अभी प्ले करूंगा और आपका मूड सेट करूंगा। स्टे ट्यून्ड
1: only on MGM 90.8

0: मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर. बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खर, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा. स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर.
0: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
3: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंदही डबल. स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत.
0: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत.
4: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत. पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991.

0: देखो भाई वीकेंड है और हमें क्या करना है, मूवी देखना है, ये तो प्लान आपका होगा ही ना। और मूवी कौन सी देखोगे आप, तो अपने शहर के थिएटर में ना तो बहुत सारे मूवीज के ऑप्शंस अभी हमें मिलने वाले हैं। अभी हाल ही में रिलीज हुई थी यश की मोस्ट वेटेड फिल्म जिसका नाम है टॉक्सिक। भाई टॉक्सिक आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा क्योंकि बहुत फिल्म अच्छी ऐसा कह रहे और बहुत फिल्म 19-20 से ऐसा भी आ रहा है कुछ रिव्यू इसका, तो थोड़े अच्छे और थोड़े बुरे रिव्यू आ रहे हैं, बाकी तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी फिल्म है। तो आज आप टॉक्सिक देख सकते हो, टिकट मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जल्द से जल्द टिकट बुक कीजिएगा, हाउसफुल शो इसके हो रहे हैं। एंड इसी के साथ आवारा पंटू अब तक थिएटर में है तो ये भी आप देख सकते हो। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ये भी अभी थिएटर में अवेलेबल है। आणि मराठी मध्ये समर्थ ही एक फिल्म आहे, तर इतकेच या वीकेंडला आपल्याकडे ऑप्शन आहेत फिल्म्सचे। सो इतनी फिल्मों में से आप कौन सी देखोगे जरा बताइए डीएमके जी का इंस्टा पर, आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। और बाकी तो मैंने बाकी फिल्में देखी, बस टॉक्सिक बाकी है। आज अगर टिकट मिल गया तो मैं पक्का देखूंगा, आपने अगर देखी होगी तो कैसी लगी आपको ये फिल्म बताइए डीएम ऑन इंस्टा आरजे अदनान। एंड बाकी स्टे ट्यून्ड
1: only on MGM 90.8.

खुशी क्या होती है पता है बचपन की, जब हम सुबह स्कूल के लिए तैयार हो जाते थे, नहा धोकर 7 बजे स्कूल चले जाते थे और स्कूल जाने के बाद पता चलता था कि स्कूल की छुट्टी है आज, किसी वजह से आज स्कूल बंद रहेगा, तो यार वो जो खुशी होती थी ना चेहरे पर, भागते भागते वापस घर आना, मम्मी को बोलना कि मम्मी आज तो छुट्टी है स्कूल की, और उसके बाद मम्मी ने जो बनाया हुआ टिफिन था ना, वही टिफिन ना कार्टून देखते देखते खाना, उसमें जो खुशी थी ना, वो खुशी आज के बच्चे ना तो एकदम मिस करेंगे यार, वो खुशी वो आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आज तो यार स्कूल अगर बंद है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है, क्योंकि यार जो 90s के किड्स है ना, तो ये खुशी का मजा उन्होंने लिया है, मैंने तो लिया है, और मुझे तो इतनी खुशी होती थी, आई हाय हाय, जैसे मैं घर पर आया ना तो एकदम चिल्लाता था कि मम्मी आज तो छुट्टी है यार। वैसे यार वो खुशी बचपन वाली जिंदगी में वापस कभी नहीं आती है। तो 90s के किड्स याद आ गए ना आपको भी आपके बचपन की, आपके स्कूल की, और भी ऐसी ना तो 90s की बातें जानने के लिए, अपने 90s के दौर में जानने के लिए मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ संडे स्पेशल शो 90s वाला शो सुनना ना भूले, सुबह ठीक 9 से संडे के दिन। सो वहां पर बस हम 90s की बातें करते हैं, कोशिश करूंगा कि मेरी बातों से ना तो आपको 90s के एक दौर में लेकर जाने की, तो भूलना मत 90s वाला शो सुनने संडे सुबह 9 बजे, और फिलहाल मेरे साथ सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrics, इनके guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष Hospital, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजी नगर.
3: Your dream is to become an engineer, an architect or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
4: Buy one get one free. होय होय खरं एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा. स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्यामकुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर्स.
5: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा या कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री.
4: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंदही डबल. स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत.
5: द्वारकादास श्यामकुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, दात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत.
4: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत. पत्ता द्वारकादास श्यामकुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765829991.

हर शहर की ना तो अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक पहचान होती है, और उस पहचान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है उसकी धरोहर का। हमारा अपना शहर छत्रपति संभाजीनगर, जिसे हम प्यार से सिटी ऑफ गेट्स भी कहते हैं, याद तो है ना आपको। और ये दरवाजे सिर्फ पत्थरों से और लकड़ियों से नहीं बने, बल्कि इनमें छुपी है हमारे शहर की सदियों पुरानी कहानी, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी पहचान। यू नो व्हाट, बड़कल गेट हो, दिल्ली गेट हो, रोशन गेट हो, या फिर कोई भी ऐतिहासिक धरोहर, ये सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई हुई विरासत है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी धरोहर को जाने, उनकी अहमियत समझे और दूसरों तक वो कहानियां पहुंचाए, क्योंकि जब हम अपनी विरासत को संभालते हैं तभी हमारी पहचान आने वाले कल तक कायम रहती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी है मेरी माटी मेरी धरोहर अभियान, मेरे शहर की पहचान मेरी जिम्मेदारी है। तो अपने शहर की जो धरोहर है, जो अपने यहाँ पर ऐतिहासिक किले है, गेट्स है, और भी जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो उनको संभालना, उनको मेंटेन करना और उनकी साफ सफाई रखना, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, बस प्रशासन की नहीं, मेरी और आपकी भी है। तो ये बात का भी ख्याल रखिए, क्योंकि यही तो इतिहास है जो हम आने वाले जनरेशन तक पहुंचाने वाले हैं। तो आइए फिर अपने धरोहर को सिर्फ देखे नहीं, उसे जाने समझे और संभाल कर रखे। तो वादा कीजिएगा कि अपनी धरोहर संभालने के लिए आप भी मदद करेंगे, क्योंकि मेरा गाँव मेरी धरोहर। स्टे ट्यून्ड। All is well with RJ Adnan.

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक ज्ञान एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
2: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा या कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
3: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंद ही डबल। स्वतंत्र दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत
2: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
3: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

0: मॉर्निंग मेरे सुकून के सफर के साथियों, आरजे अदनान आपके साथ है इन द शो। और शो में ना मैं आपको गिफ्ट जीतने का एक मौका देता हूँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मेरे सवाल का जवाब देना पड़ता है। तो आज का सवाल ऐसा था कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे पहले सूरज निकलता है। तो इसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में सूरज निकलने का प्रोसेस शुरू होती है। तो इस सवाल का एकदम सही जवाब दिया है गिरीश काय ने। सो कांग्रेचुलेशन गिरीश काय जी, आज आप विनर बन चुके हो, आपको हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। So, गिरीश जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, आज के विनर वो बने हैं। और बाकी तो दोस्तों सुनते रहिएगा आरजे अदनान के साथ।
1: Only on MGM 90.8.

0: मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in. स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर. बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा. स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर.
0: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
1: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंद ही डबल. स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत.
0: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत.
1: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत. पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991.

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Your dream is to become an engineer, an architect or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
4: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा या कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
3: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंद ही डबल। स्वतंत्र दिन करा नव्या शॉपिंग सोबत
4: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
5: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक सार। हेलो, हाय, नमस्कार, छत्रपति संभाजी नगर।
2: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एफएम 90.8।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है NGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एफएम 90.8।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: कुछ लोगों का धंधा हुआ है।
1: क्या
0: मंदिर में जो

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Buy one, get one free. Hoi hoi, khara, ek gyan, ek free milwa. Swatantra dinacha khas nimittane Dwarka da Shyam Kumar ghiun aale aaye shandar offers.
2: Banarasi satin sari, printed dola sari, designer sari, zamdani silk, kimaya cotton, kiva ladies dress. Tumchi favorite sari, buy one, get one free.
1: Manje style hi double ani shopping sa anand hi double. Swatantra din sadra kara navya shopping sobat.
2: Dwarka da Shyam Kumar, swatantryacha abhiman, natyancha sanman, shandar offer sobat.
3: Hi offer फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार शुड गो 9209099991 बीड बायपास रोड 9503109429 त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991.
4: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
5: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
4: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
5: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, अमृत नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
6: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट, और टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, सो MGM यूनिवर्सिटीज JNEC इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कोर्सेज एक्रेडिटेड बाय AICTE एंड COA, BTech, MTech, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एंड MCA। हियर यू गेट एक्सीलेंट प्लेसमेंट, इनोवेशन and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक ज्ञान एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
4: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
3: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंद ही डबल। स्वतंत्र दिन करा नव्या शॉपिंग सोबत।
4: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
5: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: NGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

0: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर. बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा. स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर.
0: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
3: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंद ही डबल. स्वतंत्र दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत.
0: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत.
4: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत. पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765892991.

0: मंडे से फ्राइडे तक हम सब एक रेस में भागते हैं। टाइम पे उठना है, ऑफिस जाना है, काम कंप्लीट करना है, डेडलाइन संभालनी है, और इन सब के बीच कभी कभी ना हम खुद को ही भूल जाते हैं। होता है ना ऐसा, सभी के साथ होता है यार। लेकिन फिर आता है वो दिन जिसका हमें इंतजार होता है, दैट्स कॉल्ड सैटरडे। और एक ऐसा दिन जब लाइफ थोड़ी स्लो करने का मन करता है, ना किसी डेडलाइन की टेंशन, ना हर वक्त प्रोडक्टिव रहने का प्रेशर। कभी कभी ना तो बस अपनी फेवरेट चाय लेकर बालकनी में बैठ जाना भी जरूरी होता है, और कभी बिना किसी प्लान के म्यूजिक सुनना, कभी दोस्तों के साथ मिलना, कभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और कभी कभी तो बस सो जाना। क्योंकि वीकेंड का मतलब सिर्फ बाहर जाना या पार्टी करना नहीं होता है, वीकेंड का मतलब है थोड़ा सा वक्त खुद के नाम करना है। तो आज क्या है, वही दिन है वीकेंड, यानी कि सैटरडे वाला दिन। मतलब मंडे की टेंशन मंडे को देखेंगे, आज थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा मुस्कुराओ और अपनी लाइफ को फील करो मेरी जान, बिकॉज समटाइम्स कुछ नहीं करना भी बहुत कुछ करने जैसा होता है। तो ये बात को याद रखिएगा और सैटरडे खूबसूरत तरीके से गुजारिएगा, चाहे दिन हो या रात हो, बेहतरीन हो ही जाएगी आपकी। यही एक मेरी ख्वाहिश है कि आपका अच्छे से सैटरडे गुजरना चाहिए। बाकी ख्वाहिशें और भी दोगुनी करते हैं ब्यूटीफुल से गाने के साथ, वो काम मेरा है। मैं अभी प्ले करूंगा और आपका मूड सेट करूंगा। स्टे ट्यून्ड
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
2: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
3: Buy one, get one free. Hoi hoi, khara, ek gyan ek free milwa. Swatantra dinacha khas nimittane Dwarkadas Shyam Kumar ghiun aale aaye shandar offers.
4: Banarasi satin sari, printed dola sari, designer sari, zamdani silk, kimaya cotton, kiva ladies dress. Tumchi favorite sari, buy one, get one free.
3: Manje style double ani shopping sa anand hi double. Swatantra din saajra kara navya shopping sobat.
4: Dwarkadas Shyam Kumar, swatantryacha abhiman, natyancha sanman, shandar offer sobat.
5: Hi offer फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ति चौक 9699703562, आणि चिकलठाणा 9765822991।
6: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

कहते हैं ना कि सर सलामत तो पगड़ी हजार। तो बात कुछ ऐसी है कि देखो हेलमेट कितने लोग यूज करते हैं, मुझे लगता है कि कोई भी यूज नहीं करता होगा। 10 में से बस 2 या 3 लोग हेलमेट यूज करते होंगे, वरना हमें लगता है भाई क्या ही हो जाएगा। और कुछ लड़के कहते हैं कि यार हेलमेट पहनने के बाद तो मेरे बाल खराब हो जाते हैं। भाई अगर सर ही नहीं रहेगा, बाल ही नहीं रहेंगे तो दिखेगा क्या? खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो सबसे पहले मार लगता है अपने सर पर, और अगर हेलमेट रहा तो उससे हम बच सकते हैं। बट ये बात हमें समझ में नहीं आती, इसी वजह से तो पुलिस ने एक मुहिम राबोली होती हेलमेट सक्ती बाबत। आणि या मोहिमे अंतर्गत ना त्यांनी शहरातील रस्त्यांवर जरा चेक केलं की किती लोक हेलमेट घालतात किती नाही, तर 1000 पेक्षा जास्त लोकांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि त्यांच्याकडून फाईन सुद्धा वसूल करण्यात आलेलं आहे। तर एकाच दिवसात 11 लाख रुपयांपेक्षा जास्त फाईन वसूल करण्यात आलंय, क्योंकि कोणी हेलमेट पहनताही नाही। तुम्ही जर बाहेर जाऊन बघितलं ना, तुम्हाला सिग्नलवर जस्ट उभं राहून तुम्ही एक चेक करा, इतके सर्व 2-व्हीलर्स असतात आणि फक्त 1 किंवा 2 लोकांकडे हेलमेट असतो, बाकी ऊपर वाले के भरोसे निकल आते घर के बाहर। और आप पर ऊपर वाले का ध्यान नहीं रहा और आपका ध्यान भटक गया और आपका कुछ हो गया तो फिर सीधा आप ऊपर वाले को प्यारे हो सकते हो। तो इस वजह से कह रहा हूं भाई हेलमेट घालत जा, क्योंकि जान है तो जहान है, और एक बात सर सलामत तो पगड़ी हजार, समझिए इस बात को। आणि वाहतूक पोलिसांची मुहिम सुरू आहे, तर जरा हेलमेट वगैरे वापरा, नाहीतर फाईन पे करा। मग बाकी म्हणू नका आम्हाला माहितच नव्हतं असं काही सुरू आहे मुहिम, तर सध्या मला माहित झालं ना, तर यूज करा हेलमेट। बाकी स्टे ट्यून ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 906

हर शहर की ना तो अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक पहचान होती है, और उस पहचान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है उसकी धरोहर का। हमारा अपना शहर छत्रपति संभाजीनगर, जिसे हम प्यार से सिटी ऑफ गेट्स भी कहते हैं, याद तो है ना आपको। और ये दरवाजे सिर्फ पत्थरों से और लकड़ियों से नहीं बने, बल्कि इनमें छुपी है हमारे शहर की सदियों पुरानी कहानी, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी पहचान। यू नो व्हाट, भड़कल गेट हो, दिल्ली गेट हो, रोशन गेट हो, या फिर कोई भी ऐतिहासिक धरोहर, ये सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई हुई विरासत है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी धरोहर को जाने, उनकी अहमियत समझे और दूसरों तक वो कहानियां पहुंचाए, क्योंकि जब हम अपनी विरासत को संभालते हैं तभी हमारी पहचान आने वाले कल तक कायम रहती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी है मेरी माटी मेरी धरोहर अभियान, मेरे शहर की पहचान मेरी जिम्मेदारी है। तो अपने शहर की जो धरोहर है, जो अपने यहाँ पर ऐतिहासिक किले है, गेट्स है, और भी जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो उनको संभालना, उनको मेंटेन करना और उनकी साफ सफाई रखना, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, बस प्रशासन की नहीं, मेरी और आपकी भी है। तो ये बात का भी ख्याल रखिए, क्योंकि यही तो इतिहास है जो हम आने वाले जनरेशन तक पहुंचाने वाले हैं। तो आइए फिर अपने धरोहर को सिर्फ देखे नहीं, उसे जाने समझे और संभाल कर रखे। तो वादा कीजिएगा कि अपनी धरोहर संभालने के लिए आप भी मदद करेंगे, क्योंकि मेरा गाँव मेरी धरोहर। स्टे ट्यून। All is well with RJ Adnan.

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।
2: साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।